0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Southampton's Community Radio, Hours FM.
3: Hello, I can listen the song for Madison, please. Name is Ashfaq. Is Jeevan Bar Saath Nibhayenge Hum Dono. Please, agar ho sake to meherbani, shukriya.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hi guys, this is Haji and you're tuned into Awaaz FM. You can follow me on Instagram by searching up one and only TG. Have a great day.

तेरिया तू रिसा रही करती, देख देख सारा दिन रहे मेथे सड़ती, रहन दे तू मेरे उत्ते दोष ना लगा, मैं भी कुट कुट देनी तेरी पूतनी पला, किवे कौड़ा कौड़ा चाके तेरे डेले पन दू, मैं भी मार मार बांदरी दा मुंह पन दू, जे काम दा को कह दे जदे लग जे तू हौंकण सौंकण सौंकणे सौंकण सौंकणे चप्पणी च पानी लैके डब मर तू मर तू मर तू मर तू मर। माही मेरा भोला गल्ला मिठियां चे आ गया, टब्बर साडे नू तेरा जादू टूना खा गया, नी तू होनी बाबियां दे धागे कट्ठे करदी, मैं ता किसे साध दी मकान वी ना चढ़दी, बस बस एना वी नी झूठ बोली दा, तू कर ला शर्म नी तू फर तोली दा, जिद्दा मार दे छड़प्पे डड्डू टप दी, तू औंकण सौंकण सौंकणे सौंकण सौंकणे चप्पणी जवानी लगे।

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: एक पल की लापरवाही।
3: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: We've left a bit of paper. It's that taskmaster, Ali, the station manager, cracking the whip, saying it can't just be you two talking nonsense all week.
5: That's right, yeah.
4: You need to get someone else to talk nonsense
5: exactly with
4: you.
5: With us.

0: Yang Yingru of China.
1: Friend of the show.
0: Friend of the show. She's one of the 900 that listens. She's,
1: she's
0: big shout out to Yang.
2: आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। Just because I'm a driver.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं उन्हीं ग्राउंड आया सा घर, प्रोग्राम तोड़ा लाया, डाउनलोड किया। तू बोल से तो मेरे से कोई फरमाइश कर सा ना, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे आप अपने वेले वाला या दोयां दा, जेड़ा गाना असा आखसा ला से ना, माड़े मैसेज ले पहुंचनी फिर मैं सुना।

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Southampton's Community Radio, Hours FM.
3: Hello, I can listen the song for Madison, please. Name is Ashfaq. Is Jeevan Bar Saath Nibhayenge Hum Dono. Please, agar ho sake to meherbani, shukriya.

भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर बेकफन।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: उत्तर गाना तो सुनना चाहने हाँ। उत्तर रेडियो पर जवाब देना। पर लस्सी वाले सागे नहीं रेसिपी तो दसो ना। जी तो सब बैंगना वाली दसने हो दुई दसने हो। लस्सी वाले सागे नहीं दसो जो पूरे इंग्लैंड ही तुम्हें पैन पर साढ़े खूह पर कड़ी कड़ी बूटी लभनी बात हुआ समेत तो लस्सी किसा भाई को उसके पकाने।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैकदों में वीरानी सी छा गई है, मैकदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जामिए, नजरों के प्यालों से छलकते जामिए, हर सू मैं कशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है। शुक्रिया।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: To listen back to shows on Awaaz FM, simply go to our podcast page on the website at www.awaazfm.co.uk/podcast. You can download any show and listen to it again. These will stay on the website for 14 days. Alternatively, listeners can call the studio on 02381 980072 and press option 4, and you can record your dedication or request. We will then download your voice message, edit it, and then add the requested song and play out during our overnight service.
4: तुम्हें ऐसे कितने दिन याद है रॉय? Your first job, पहला suit, पहली salary. जब तूने एक लड़की को पहली बार छुआ, पहली बार चूमा, जब पहली बार तुम्हारा दिल धड़का रॉय.

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours
2: FM. पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी हो के डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I've had a couple of mates.
1: Oh, shall we do some adverts and then come back?
0: Yeah,
1: right, so...
0: Cut me off there, didn't it?
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में Awaz FM

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: हेलो, हाउ आर यू? मी यासर। यू प्ले अ गुड सॉन्ग फॉर मी।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Awaaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper. Every Monday at 8 a.m. only on Awaaz FM.

मर्जी है, मैं रगेरा हूँ नहीं। मेहनत किया अकेले मैंने, जज कर सकता तू नहीं। हम लिखते अंगारे बेटा, समझ मुझे फूल नहीं। जब किया मैंने खुद से तो गुरूर मुझे।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
4: थैंक यू मॉम।

आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। आशा भोंसले एंड किशोर कुमार वर सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म नमक हलाल। दिस इज आवाज FM एंड यू आर लिसनिंग टू माय मैगजीन शो किनारे किनारे। आई एम रॉही बेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर जरा हटके ऑफ द बीटन ट्रैक। इन दिस पार्ट ऑफ माय शो आई ट्राई एंड प्रेजेंट टू यू अ रादर अनयूजुअल पीस ऑफ म्यूजिक, समथिंग यू नॉर्मली डू नॉट हियर इन द मेन मीडिया। And today I have selected Subroto Mitra of Kolkata to sing for you Hosh Mein Aao To Jaano Bekhudi Kya Cheez Hai. Enjoy!

0: चकली है। और ये मक्के का शेर, उससे पहले ये चार मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती,
1: क्या बात है?
0: खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था।

0: गुरुदत्त गीता बाली के बहुत बड़े मुरीद थे।
1: जितनी दूर जाने की कोशिश करोगी मुझे उतना ही करीब पाओगे।
2: तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान ना करो।
1: ये परेशानी तो तुमने खुद पैदा की है निशा।
0: बड़े बड़े एक्टर्स गीता बाली के साथ काम करना चाहते थे और तब इनके जीवन में आए शम्मी कपूर। शम्मी कपूर तब इतने बड़े स्टार नहीं थे और गीता बाली का बोलबाला था। सन 1948 की फिल्म सुहाग रात में ये भारत भूषण के साथ नजर आई थी और फिल्म बनाई थी केदार शर्मा ने। देव साहब के साथ नजर आई ये फिल्म बाजी, जाल, फेरी, मिला, फरार, पॉकेट मार।
3: मरे हुए को मारने से क्या मिलेगा, उधर निशाना लगाओ, लग गया तो इनाम पाओगी। देखो इसे यहाँ लगाओ कांधे से। हाँ अब एक आंख बंद करो। अब मिलाओ निशाना इस मक्खी से। शाबाश, ठीक है, शूट। 1 2 तुम तो बड़ा अच्छा निशाना निकाले।
0: इसी बीच गीता बाली गई हिमालय पर्वत की वादी रानीखेत में, जहां पर एक फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग हुई, जहां पर शम्मी कपूर साहब हो गए इन पे फिदा। किस्सा यूं रहा कि शम्मी साहब को जमाने में शिकार का शौक था, तब शिकार की अनुमति भी थी। ये गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठी थी गीता बाली, तभी सामने से शेर निकल कर आया। गीता बाली डरी नहीं और गाड़ी के बोनट पर बैठ गई। शम्मी कपूर के हाथ में बंदूक थी और गीता बाली ने फुसफुसाकर कहा कि शम्मी वो रहा शेर, लगाओ निशाना। शम्मी साहब इस बात पर बड़े हैरान हुए कि कैसे एक लड़की निडर होकर गाड़ी के बोनट पर बैठी है, और तभी इन्होंने मन बना लिया कि यही इनकी बीवी होगी। पर इतने में शेर गायब हो गया। शम्मी कपूर अक्सर गीता बाली से कहते कि चलो हम शादी कर लेते हैं, गीता जी हर बार इनकार करती। एक दिन शम्मी कपूर ने बहुत जिद की और गीता जी ने कहा कि अगर शादी करनी है तो अभी करनी होगी। आधी रात का वक्त था, कोई मंदिर भी ना खुला था। सुबह 4 बजे का इंतजार किया गया, मंदिर खुला, हाथ में सिंदूर भी नहीं था और शम्मी कपूर को गीता बाली ने दी अपनी लिपस्टिक और कहा इस लिपस्टिक से ही मेरी मांग भर दो, और इस तरह से इन दोनों की शादी हुई। सन 1956 में इन्हें पहली औलाद हुई, नाम रखा गया आदित्य, और फिर दूसरी औलाद हुई जो कि एक बेटी थी, नाम रखा कंचन। शम्मी कपूर एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। तुमसा नहीं देखा छा गई थी, जंगली कमाल कर रही थी,

0: और इसी बीच गीता बाली ने सोचा कि वो एक फिल्म बनाएंगी राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल पर, नाम होगा एक चादर मैली सी। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र साहब को एक मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, पर फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता बाली बीमार पड़ी, उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया। इन्हें मुंबई लाया गया और मुंबई लाने के कुछ दिनों के बाद ही इनका इंतकाल हो गया। शम्मी कपूर टूट गए, परिवार बिखर गया। एक जबरदस्त अभिनेत्री जिसके चेहरे पर एक अजब शरारत, अजब संजीदगी थी, जिसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था और बहुत जल्दी वो ये दुनिया छोड़ चल बसी। तारीख थी 21 जनवरी 1965। भारतीय फिल्म इतिहास में गीता बाली का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
1: रोशनी आदमी खुद ही करता है और ये नहीं जानता कि उसे उजाला मिलेगा या आग लगेगी।
2: I'm John Denham. You're listening to Hours FM,
3: Southampton's community radio. Hours FM.
4: That was a Bollywood biography of Geeta Bali. You are listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines, and this is Hours FM. Hours FM comes to you here in Southampton on 99.8 FM, and throughout the Southern Hampshire, especially in Portsmouth and the Winchester areas. You can listen to us on the DAB radio. Anywhere else in the world, just log on to awazfm.co.uk and listen live and also listen back. Now let's listen to Lata Mangeshkar singing from the film Noori, which was released in 1979. Chori chori koi aaye, chupke chupke, sabse chupke. The music is composed by Khayam. And Naksh Lalpuri wrote the words for it. This song was picturized on Poonam Dhillon. Enjoy this romantic Gana, and after this, we'll have Name the Film, Film Ka Naam Kya Hai?

0: सीखे ना भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ाऊँ?

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: Here I am, Southampton, South UK. It's Ned, and he's on the radio today. My name is Rapper Ned, and I'm here to say, tune into Was FM, okay?
3: Excellent. No, excellent.
4: लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती? अलका याग्निक and Sean were singing from the film Hum Tum. This is Was FM, and you're listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Bain. Well, how did you do with the quiz? Were you able to work out the name of the film? Because this is a friendly quiz, here is the answer. The name of the film is Andhi. Andhi. Did you get it right? If you did, then you definitely deserve a pat on the back and a huge shabash. But if you got it wrong, oh well then, never mind. Better luck next time.
5: Shabash.
6: Shabash.

हिंद मुस्लिम सिख ईसाई सबकी खिदमत में करता हूँ सलाम। अहमद असाई मेरा नाम, आ गया हूँ स्टूडियो के अंदर जी इस वक्त। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं जी, आबाद रहें और शाद रहें, खुदा खुश रखे आप सबको। ये प्रोग्राम मेरा होता है जी 2 से लेकर 4 बजे तक हर ट्यूसडे के दिन। वैसे शुक्रिया अदा करता हूँ उन साहबान का जिन्होंने आज ट्यूसडे का दिन 9 से 10 बजे तक आए थे जी, हमारे न्यूज़ लेजेंड ऑफ द न्यूज़ लेकर प्रोग्राम आया था एक जी 10 से लेकर 11 बजे तक, काफ़ी आवाज़ लेकर आए। अली साहब, राही बैंस आई 11 से लेकर 1 बजे तक और 1 से लेकर 2 बजे तक जनाब हमारा कम्युनिटी आवर का आपने सुना प्रोग्राम। 2 से 4 बजे के लिए मैं आपकी खिदमत में इसको हाजिर हूँ। 4 से 6 बजे आएंगे जनाब शोएब ड्राइव टाइम लेकर, उर्दू में खबरें होंगी 6 बजे और 6 से 8 बजे शाम आज क्वालियों का प्रोग्राम है। कुछ आने वाले प्रोग्राम, कुछ जाने वाले प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि जिन जिनके पास वक्त हुआ ज़रूर हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पटेल साहब, आप आ चुके हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और यास्मीन बानो जी, आप कहती हैं आज मैं आऊँगी जी, अगर आ गई तो ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बाकी साहबान जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ मेरा ये पैगाम जा रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे आज टेलीफोन काम कर रहा है, सही बता रहा हूँ, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। टेलीफोन नंबर भी बता देता हूँ, वैसे तो आपके पास इस वक्त सेव किया होगा कहीं ना कहीं, वैसे बता देता हूँ कौन सा हमने कहीं बेचना है जी। 02381980072 है जी, extension 3 ज़रूर दबाइएगा, सीधे मेरे पास पहुँच जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट करना चाहें तो ये है 07784691440, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का पहला नगमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जी, फिल्म का नाम है नीलम। माला बेगम और नज़ीर बेगम ये दोनों मिलकर गा रही हैं और आप तक ये आवाज़ पहुँचा रहा है जी अहमद साई, या रेडियो आवाज़ जहाँ जाकर इसकी लाइनें पहुँचती हैं वो सुनिए जी। DAB रेडियो पर भी सुनिए और www.awazofm.co भी सुनिए, और साउथ हैम्पटन में तो सुन रहे हैं जी आप इस वक्त 99.8 FM पर जी। एक चोट लगी दिल पे जब कोई चश्मे नरगस से महफिल में आया,

0: अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, किसी के दिल में चोट लगी अगर हम महफिल में आए तो। वैसे गाने का बोल थे जो आपको सुनाए, एक चोट लगी दिल में जब कोई चश्मे महफिल नरगस में आया, कुछ ऐसी बात है जी। अगला गाना आपको सुनवाते हैं जी, अहमद रुशदी और उनके साथ कोरस हैं, फिल्म का नाम है वादा। कहते हैं जी, जाने वाले पलट के देख वरना तेरी कसम दम निकल जाएगा।
1: मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जाने वाले हाय

0: जाने वाले पलट के देख ले, आप क्या कह सकते हैं जी, कोई देखता पलट के या नहीं देखता, पर अलबत्त ये ज़रूर है कि टेलीफोन की घंटी बजी और दिल हो गया गार्डन गार्डन। जनाब आ गए हमारे राज राम जी, नमस्कार।
1: ओ नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। भैया अली साहब की कोशिश तो अभी कामयाब हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी आपकी दुआओं से या कोई धक्का दे दी, आपने क्या किया?
1: हमने तो कुछ किया ही नहीं, कर हमारा हाथ यहाँ से वहां तक और नेटवर्क में पहुंचने वाला भी नहीं है।
0: अरे बड़े बड़े लंबे आजकल बरकी हाथ बड़े बड़े लंबे हैं भाई। अच्छा एनीवे कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी ठीक है। अच्छा
1: चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो कोशिश तो कामयाब हो गई, लेकिन हम तो बहुत खुश हो गए भाई। रेडियो के टेलीफोन चालू हो गया, घंटी बजी, मैं भी खुश हो गया घंटी बजी।
0: बिल्कुल जी, दिल हो गया फिर गार्डन गार्डन। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत
1: शुक्रिया। आज तो भाई भाई पटेल साहब भी आज पहले पहुंच गया, यासीन भानू भी आज आने वाली है, तो भाई हमारे लिए तो भाई बहुत खुशी की बात है।
0: ऐसे लगता है, ऐसे लगता है कि पहुंच गए हैं। वैसे अभी कंफर्मेशन जी,
1: हमारा तो नवरात्रि का दिन चलता है, अभी तो तीसरा दिन हुआ, अभी छह दिन बाकी है।
0: अरे वाह जी वाह, क्या बात है। एंजॉय एंजॉय प्लीज।
1: हम तो बहुत खुश है भाई, भाई हमारी बहन आई तो हम तो बहुत खुशी से गाना मुस्कुराएगा, गुनगुनाएगा।
0: जी जरूर
1: आ जाएगा, उसको जरूर आ जाएगी बहन।
0: जी जी आइए आइए, मैदान में आइए जी।
1: और हमारे साहब, हमारा भाई यार क्या करता है, उसकी तबीयत ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं, सलाम दुआ कर गए हैं, अपनी फरमाइश
1: आ जाएगी, आ जाएंगे। बस ये भी है बाकी, और अभी मैडम नहीं आती भाई, वो उसको भी क्या बात है पता नहीं
0: भाई। ये मेरा ये प्लेटफॉर्म सर जी खुला है सबके लिए, आप जबरदस्ती किसी को लाना जरा मुश्किल है।
1: खुला ही रहना, खुला ही रखना, बस सभी सभी आ सके।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। क्या गुनगुना रहे हैं फिर आज? जी
1: जी भाई गुनगुनाने में क्या, हम तो मुकेश के गाने के पागल है और गाना वही उसका ही गुनगुनाते हैं।
0: आप हैं मुकेश तो उसका गाएंगे ना जी, फरमाइए।
1: थैंक यू थैंक यू भाई। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।
0: वाह जी।
1: और अभी मुकेश ही गाता है, वो लंदन वाला मुकेश उसको सपोर्ट करता है।
0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बड़ी महान बात है।
1: अच्छा थोड़ा बोले गुनगुना देवे
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: थैंक यू थैंक यू। चांद आंधे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा, ये गाना सबको सुनाना है। और मेरा गाना तो एक तो स्पेशल है, मैंने आपको बोला हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन वो लता का ही बजाना है, कोई दूसरे आर्टिस्ट का नहीं बजाना।
0: अच्छा जी मैं देखता हूँ, ठीक है जी।
1: बहुत वही फिल्म का, वो फिल्म का ही गरबा है, वही फिल्म का गरबा सुनाना हमको।
0: अच्छा अच्छा, उसका बोल क्या है मेला?
1: थैंक यू सभी को भाई, नवरात्रि मुबारक हो, मुबारक हो।
0: जाते जाते उस गाने के बोल भी बोल जाइए ना।
1: कौन सा हो गाना का?
0: हाँ हाँ, क्या बोल है उसके?
1: मेहंदी तेवावी मांडवे नो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लगो।
0: क्या बात है क्या बात है। ठीक है जी, बहुत जल्दी आएगा जी, पहले आपको मुकेश सुनाते हैं फिर वो सुनाते हैं।
1: गरबा में जाते हैं तो बस आनंद लेते हैं, बच्चा लोग खेलते हैं तो
0: अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी अच्छी अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी,
1: थैंक यू, सबको मुबारक भाई,
0: खैर मुबारक, थैंक
1: यू, नवरात्रि,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राज राम जी। नवरात्रि सबको जी मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको जहाँ जहाँ मना रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, भला हो आपका जी। राज राम जी आप अप टू डेट करते रहते हैं और मुझे समझाते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आपने जो गुनगुनाया गाना, सबसे पहले मुकेश का, मुकेश ही बनकर आप आए हैं जनाब फिल्म फूल बने अंगारे से। मुकेश ही की आवाज़ में सुनते हैं चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेके, क्या बात है।

0: चांद आहे मरेगा फूल दिल थाम लेंगे, मुकेश की आवाज़ में आपने सुना जी फिल्म फूल बने अंगारे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजराम जी, आपकी खुद की फरमाइश भी बहुत जल्दी पूरी करते हैं जनाब। अगला गाना सुनवाते हैं जनाब आपको, जनाब मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब, आप आए बहार आए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहार तो आपके आने से ही आती है इसमें कोई शक नहीं, और साथियों के आने से भी आती है। फिल्म का नाम भी यही और गाने का नाम भी यही, वैसे गाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी। हाजिर खिदमत सामीन फरमात भाई,
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

थैंक यू वेरी मच जनाब क्राही साहब। आप कहते हैं जी आप आए बाहर आई, आप कहते हैं जी गाना मैंने सब के लिए कहा था, कहीं आप खुद ही ना मालिक बन के बैठ जाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप नाम दे देता हूँ जी, आप यास्मीन बानो को भी वेलकम किया आपने, आपने पटेल साहब को भी वेलकम किया जी, आपने राजराम को वेलकम किया जी, जो बाकी के सुनने हैं उनको भी आपने वेलकम किया, और चलो जी मैं समझ लेता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपने मुझे भी वेलकम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने याद फरमाया जनाब कुरैशी साहब। और हमारे लिसनर कोई कम नहीं है, लीजिए आपकी इस गाने के जवाब में आपका जवाब आ रहा है जनाब। यास्मीन बानो आपको जवाब दे रही, कहती हैं जी और तुमको भी सलाम भाई, और सबको सलाम है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना आप सबके लिए पेश किया है। जो जो सुनते हैं कहाँ सुनते हैं जी, रेडियो आवाज़ एफ एम साउथहैम्पटन में सुनते हैं 99.FM पर, www.awazfm.co.uk पे सुनते हैं, DAV रेडियो पे सुनते हैं, और सुनते रहिए जनाब। आ गए हैं तो वेलकम लीजिए सबको जहाँ जहाँ है जनाब। यास्मीन बानो की तरफ से सलाम।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी। ये जो आपने सुना जी, तुमको सलाम है, ये आप सबको सलाम भेजा था जनाब यास्मीन बानो जी, फिल्म थी आशा। अगला गाना जो आ रहा है जी, अशोक पटेल जी आपके लिए आ रहा है जी। अगला गाना आप ये सुनना चाहते हैं, और ये सुनना चाहते हैं जी, सुनना चाहते हैं। आपने अभी अभी हमसे पूछा था, तो हमने कहा जी आपको सुनाते हैं गाना। आप कहते हैं जी, आ गए यारो जिनके दिन। आप किसके दिन आए जी? मोहम्मद रफ़ी बता रहे हैं फिल्म फिर वही रात। और फरमाइश आपकी जनाब पटेल साहब।

आ गए यारो जीने के दिन, ये आपकी फरमाइश थी जनाब पटेल साहब। फिल्म का नाम था फिर वही रात और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना पेश करता हूँ जी, जो आप सब के लिए है जी, जो जो आज ख़ास दिन मना रहे हैं जी गरबा का, और ये गुनगुनाया था जनाब राज राम जी ने भी, और जहाँ जहाँ इसकी आवाज़ पहुँचे जी हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकें जी। और गाना है गुजराती में और गुजराती सुनने वाले भी बहुत हैं हमारे जी, जैसे पंजाबी सुनने वाले हैं। तो लीजिए ये गाना भी आपको सुनवाते हैं जी। फिल्म का नाम है मेहंदी रंग लागियो और लता मिश्र की आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं जी ये गरबा वाला सॉन्ग मेहंदी ते आवी।

0: मेहंदी दे वावी जनाब सुना आपने लता मिश्र को आवाज़ थी जी, लता मिश्र की ही, और फिल्म का नाम था मेहंदी रंग लागियो। लो जी ये फरमाइश की ना जी हमारे फिर शहर अच्छे भी लोग गुजराती साहब ने जनाब आ गए जनाब एयर पर। राज राम जी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, नमस्कार भाई। ये फिल्म तो मैंने नैरोबी में देखी थी, कोई 50 साल ऊपर हो गया मेरा ख्याल।
0: क्या बात है,
1: बहुत पुरानी पिक्चर है। पिक्चर भी बहुत अच्छी थी। राजेंद्र कुमार, उषा किरण, हिंदी वाले एक्टर गुजराती में एक्टिंग करा, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा जी लगा जी आपको ये याद वापस आए इसके साथ बहुत सारी, और उम्मीद करता हूँ बाकी भी सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब।
1: थैंक यू भाई, सभी को भाई मुबारक हो नवरात्रि। थैंक यू भैया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समीन ये थे हमारे भाई राजराम जी, उन्होंने फरमाइश की थी, उनको गाना भी अच्छा लगा और रह ना सके, कहते जी मैं खुद सबको बधाइयाँ देता हूँ, मुबारक देता हूँ, और आए जनाब और हमारा दिन बना गया। आप जानते हैं जब टेलीफोन खड़कता है तो फिर साई के हो जाता है जी। दिल गार्डन बाकी कहाँ है यार, ज़रा आवाज़ दो ना, कहाँ है दुनिया तो हमारी जवां है, कुछ ऐसी बात है। चलो नूर जहाँ सुना देते हैं जी, साथ सुरेंद्र की आवाज़ है, फिल्म अनमोल गढ़ी।

जी हाँ, हम तो कह ही सकते हैं जी, आवाज़ दे तू कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, नूर जहाँ की आवाज़ में आपने सुना। साथ इनका सुरेंद्र दे रहे थे, थोड़ा बहुत अनमोल गढ़ी फिल्म का नाम था। ये अगला गाना सुनाता हूँ आपको जी। कहते हैं जी, कभी तो तन्हाइयों में जी फिर हमारी याद आती होगी, फिल्म का नाम है भी है हमारी याद आएगी। मुबारक बेगम की आवाज़ में सुनाता हूँ जी, समात फरमाइए।

0: कभी तनहाइयों में हमारे यूँ याद आएगी जी। मुबारक बेगम की आवाज़ थी जी, फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी। हाँ जी, किसको हमारी याद आ जाती है जी, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक पैगाम आ गया है, देखता हूँ क्या लिखते हैं जी। कहते हैं जी, राज राम जी विल लाइक प्यासा पंछी सॉन्ग। अच्छा जी, पटेल साहब आपका मैसेज में मिल गया, देखता हूँ जैसा भी बराबर आया सुना सुनाते हैं जी। मैं यहाँ बैठा इसीलिए हूँ आपके दिल में जो बात आती है ना वो कह दिया करें। बस आपके आने का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तशरीफ लाते हैं और फिर गाने बजाते हैं ना जी हम आपकी मर्ज़ी के, तो तभी तो इस प्रोग्राम को लग जाते हैं जी चार चांद। और ज़रूर आया कीजिए और अपना ज़रूर गाना भी फरमाइश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अलबत्ता आपको ये बता दूं कि आप इसको सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ एफएम साउथहैम्पटन 99.8 FM, तो साउथहैम्पटन सुन रहे हैं आप। और इत्तेफाक से आज हमारा टेलीफोन काम कर रहा है, आप टेलीफोन कर सकते हैं अगर बात करनी है तो। और टेलीफोन का नंबर है 02381980072 एक्सटेंशन 3। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट करना चाहें आप तो कर सकते हैं, पैगाम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं जो स्टूडियो का व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर, ये है 07784691440। नोट फरमाइए जी और ज़रूर तशरीफ़ फरमाइए जनाब बाय टेलीफोन। या वैसे अगर आप चाहना आना चाहें यहाँ पर तो साईं हाज़र है, मेरे प्रोग्राम में भी जो आदमी यहाँ तशरीफ़ लाना चाहते हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये दफ्तर आप ही के लिए खुला है, रेडियो भी आपके लिए खुला है, संगीत भी आपके लिए हैं, कम्युनिटी आवर्स भी होते हैं यहाँ और कम्युनिटी के प्रोग्राम भी होते हैं, क्योंकि है ही रेडियो कम्युनिटी का है जी। तो कम्युनिटी की खैर खबर ना ली जाए तो ये तो फिर बात ना हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फौरन ख़बरों के बाद जनाब अमीन साहब, अशोक साहब और यास्मीन बानो जी आपके गाने बिल्कुल लाइन अप किए हुए हैं मैंने, और बहुत जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी तमाम फरमाइशें पूरी हो सकें, तो कभी कभी ऐसा मुमकिन नहीं होता, मगर साईं कोशिश तो करता है ना, इतना तो कम अज़ कम आप मुझे क्रेडिट देंगे ना। अब खबरें सुनते हैं।
1: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
2: AI could give terrorists access to bioweapons or generate new pathogens if guardrails on the technology fail. That's what the head of MI5 has said. Sir Ken McCallum has announced the launch of a new AI threat assessment centre, which will work to assess the potential risks posed by developing AI. Police in Ireland have begun a murder investigation into an arson attack at a house in Waterford City. It's led to the deaths of a man, woman and two children. Two other children are critically injured in hospital. Sinn Féin TD for Waterford, David Cullinane, is at the scene.
3: There is just real trauma. People are devastated, real heartbreak. I knew the family myself and I'm just heartbroken. Further, I met them only very recently. This is very raw for everybody involved.
2: And in other news, a group of people are being deployed to Antarctica to protect a historic base from climate change on the icy continent. The UK Antarctic Heritage Trust is in year two of its three-year mission. That's the latest from Radio News. I'm Tanita Sims.
4: Your holiday park home will be a great investment.
5: You'll lose thousands on your holiday park home.
4: All the fees are fully explained.
5: There are hidden fees you're unaware of.
4: Yeah, you can easily sell anytime.
5: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
1: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
0: Who خوش آمدید، ویلکم بیک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زمین جہاں کہیں آباد رہیں اور شاد رہیں. آ گیا ہے جی احمد صاحب پروگرام کا دوسرا حصہ لے کر. اس وقت دن کے 3:03 ہو چکے ہیں. آپ کی خدمت میں اگلا گانا آ رہا ہے. جناب محمد امین قریشی صاحب یہ گانا پیش کر رہے ہیں. جی کہتے ہیں جی میری طرف سے خصوصی جائے گا تو سارا گانا پوری دنیا میں، مگر یہ کرنا ہے جناب راج رام جی آپ کے نام. کہتے ہیں جی یہ ہمارا بھی ایک پاکستان میں مکیش ہے، ذرا اس کی بھی آواز سنیے. ویسے نام تو اس کا ہے رنگیلا، فلم کا نام ہے دین. اب ایک جو پڑھ رہا ہوں دیا اور طوفان. کہتے ہیں جی گا میرے منوا گاتا جا رہے، جانا ہے ہم کو دور.

थैंक यू वेरी मच आप खुरैशी साहब, बहुत अच्छा गाना लगा जी। अभी भी राज राम जी ने भी फ़ोन किया, कहते हैं जी मुझे भी बहुत अच्छा पसंद आया, बल्कि दोबारा उन्होंने पूछा जी मुझे देखनी है फिल्म भी, कहते हैं देखनी है। बहुत शुक्रिया आपका जी, अपनी अपनी चॉइस होती है जी। हमारे ये रंगीला जी पाकिस्तान के हैं तो मस्खरा काम करने वाले थे, मगर इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और इन्होंने बल्कि एक दो फिल्में भी बल्कि ज़्यादा अपनी ही बनाई हैं और अच्छी फिल्में दी हैं पाकिस्तान को इन्होंने। आइए अगला गाना सुनते हैं जनाब। ये गाना यास्मीन बानो जी आपके लिए पेश करता हूँ जी। आप सुनना चाहती हैं जी फिल्म आदमी खिलौना है, ये गाने की मतलब गाने गाना इस फिल्म से लिया गया है जी। पंकज उदास की आवाज़ है इसमें, कहते हैं जी आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही होना है। लीजिए हाजिर है, इसमें शक भी नहीं है।

0: पंकज अदास की फिल्म जी फिल्म थी आदमी खिलौना है, और ये फरजाना जी आपकी फरमाइश थी। अगला गाना सुनाते हैं अशोक जी आपके लिए। आप कहते हैं जी बातें कर लो, बातें कर लो, हम भी तो हैं थारे यार, बातें कर लो। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ फिल्म जी, वल्लाह क्या बात है।
1: हमसे भी तो तन

जी अशोक पटेल जी, आपने अपनी पसंद सुनी जी, बातें कर लो जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी जी, फिल्म का नाम था वल्लाह क्या बात है। अगला गाना आ रहा है जी, बेगम रोशनी जी आपके नाम करता हूँ जी, क्या करें आदत सी पड़ी हुई है आपको गाना कोई ना कोई सुनाने की जी, चले हैं क्यों सरकार हमें बेकरार करके, मोहम्मद रफ़ी रहता हूँ इसकी आवाज़ थी जी, फिल्म नाचे नागन और बाजे बीन

जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी खुशी कौन सोख सकता है। फिर तकरार करके ला हौला वाला कुव्वत लीजिए, एक और गाना सुनाते हैं आप सबको। सुनिए इस वक्त मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रही हैं आशा भोसले, फिल्म है सात सवाल हातिम ताई वाले। जी कहते हैं जी, जाने मोहब्बत जाने तमन्ना, मुझको तुमसे प्यार है, कुछ है ना।

जी बिल्कुल, अल्लाह के हवाले जी। अगला गाना है फरमाइश है जी, आप थोड़ा सा ये दुखिया सा गाना सुनना चाहते हैं, आपकी फरमाइश था फिर मेरा काम तो है जी, गाना मिल जाए तो ज़रूर। फिल्म का नाम है जी फिल्म का नाम है जी कोहरा। लता मिश्र गा रही हैं, कहती हैं जी, ओ बेकरार दिल हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार।

0: थैंक यू वेरी मच जनाब जफर सज्जाद साहब, आपने टेक्स्ट भी किया है, आपको गाना पसंद अच्छा लगा और आप ही की पसंद है जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, कभी आया करें ना, बहुत दिनों बाद तशरीफ फरमा है, वक्त हो गया, छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ।
1: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
2: एक पल की लापरवाही।
3: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंतज़ार करवाया जी, बहुत बहुत आपको सबको, यास्मीन बानो जी, मिसेस महमूद, आपकी हिदमत में अगला आपकी पसंद का गाना आ रहा है जी। आप कहती हैं जी, मैं तेरे दिल में धड़कन में आंसुओं में बंद हूँ, क्या बात है जी। कुमार सानू की आवाज़ है, अलका याग्निक इनका साथ दे रही हैं, फिल्म का नाम हकीकत।

क्या बात है मानो जी, व्हाट ए वंडरफुल चॉइस। फिल्म हकीकत में आपने सुना जी, फिल्म हकीकत में गा रही थी अलका याग्निक और कुमार सानू। अगला गाना आ रहा था जी राज राम जी, आपकी खिदमत में आता हूँ जी। आप कहते हैं, क्या कहते हैं, फिल्म अदालत में सुनना चाहते हैं। लता मंगेशकर को कहते हैं जी, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ कहते हैं, क्या बात है जी, सुनते हैं।

उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। फिल्म अदालत में लता मंगेशकर की ये गज़ल आप सुनना चाहते हैं राजनाम जी? जी हम तो ये नहीं कहते जी, कुछ नहीं कहते जी, हम तो कहते हैं जी कुछ कहते कहते रह भी गए, सारी सारी रात ही याद करते रहते हैं जी, कहते हैं ऐसी बात है। लता मंगेशकर की यही आवाज़ है जी, फिल्म है जी अजी बस शुक्रिया।

बड़े क्लासिक जनाब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जी गा रही थी, ये गाना सारी सारी रात तेरी याद सताए रहे जी। अगला गाना आपके लिए आ रहा है जनाब मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब, आप आए तो बाहर आए, फिल्म का नाम है हेमलता और साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, अच्छा जी

0: बड़ा अच्छा गाना पेश किया जी। मालूम होता है कहीं बच्चों की बर्थडे की ही याद आ गई जी, जिन जिन की बर्थडे थी जी उन सबको आवाज़ टीम की तरफ से भी मुबारक हो जी सालगिरह की। अगला जो गाना आ रहा है जी पसंद है आपकी जनाब पटेल साहब, आप सुनना चाहते हैं जी आदमी और इंसान, क्या बात है क्या क्या फ़र्क होते हैं जी इन चीज़ों में। मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं गाना जी, कहते हैं जी क्या बात है, बचा ले ऐ मौला ऐ राम वतन का क्या होगा अंजाम, अब जी खुदा ही बेहतर जाने।
1: बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुगनाम।

0: वतन का क्या होगा अंजाम, बचा लिया मौला है राम। क्या बात है जनाब, आपकी पसंद की जनाब अशोक पटेल। फिर हो जाता ना दिल गार्डन गार्डन जब आते हैं आप तो कभी कभी मिस कर जाते हैं साथी कुछ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको ज्वाइन करने का। जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे थे जी, आबाद रहें और शाद रहें। मेरे प्रोग्राम का अब हो गया ना जी वक्त ख़त्म हो, तो बताता जाऊँगा आपको जनाब कि मैं इंशाल्लाह फिर अगले ट्यूसडे आप ही की इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊँगा। और कल पंजाबी का प्रोग्राम जो है वो भी सुनिएगा 11 से लेकर 1 बजे तक। ये जो पटवारी पंजाबी और सराकी होता है कल मैं प्रोग्राम करता हूँ। बाकी प्रोग्राम आपको पता ही मैं कवर करता हूँ वगैरह वगैरह। सुनते रहिए और इस प्रोग्राम में तो आप ख़ास होते हैं जी ट्यूसडे का। अगले ट्यूसडे का इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरे जाने के फ़ौरन बाद आ रहे हैं शोएब ड्राइव टाइम लेकर, जो 4 से लेकर 6 बजे तक आएंगे। 6 बजे उर्दू में खबरें होंगी और 6 से लेकर 8 बजे तक आ रहे हैं जी हमारे कवाली करने वाले मैनेजर साहब जनाब। अपनी कवालियों का बड़ा सारा टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और वक्त मिला तो उनका साथ भी दीजिएगा। और जिन जिनों ने साथ दिया जी, खुदा आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और शाद रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते आपकी खिदमत में एक आवाज़ छोड़ के जाता हूँ। शायद आज मैं मसूदराना छोड़ के जा रहा हूँ जी जी, बिल्कुल मसूदराना का कोई गोरों को गाना आप ज़रूर सुनेंगे जो आपको ले जाएगा 4 बजे खबरों तक। खबरों में जैसा कहा मैंने शोएब साहब आ रहे हैं, मुझे आप दीजिए जी इजाज़त अल्लाह सोने के हवाले जी। रब रखा यार जिंदा, सोहबत बाकी रही, दिल में दिल जान में जान, तो आपकी हाजिरी हो जाएगी जी मेरी और आपकी सबकी। खुदा हाफिज़ जनाब, यार जिंदा सोहबत बाकी। मसूद राना की आवाज़ में बाकी के कुछ नगमात आपकी खिदमत में कम अज़ कम एक तो ज़रूर सुनेंगे।
1: At 5 o'clock, yeah?

0: St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
1: Assalamu alaikum, namaskar, sasriyakaal, aadab, khush aamdeed. Aap sun rahe hain Awaaz FM Community Radio, aapki awaaz aapke shehar mein 99.8 FM aur duniya par aap hame sun rahe hain awaazfm.co.uk par. Main hoon aapka host Ali aur aapka aur mera saath rahega 8 baje tak. Is waqt aap sun rahe hain program Mehfil-e-Qawwal yani ke Qawwali program. Khush aamdeed karta hoon aap sab logon ko. Welcome to the show Awaaz FM Community Radio, aapki awaaz aapke shehar mein 99.8 FM. Program ka format aapko batata chalun ke program ke pehle hisse mein aapke liye पेश करता हूं कुछ ट्रेडिशनल कवालीज और उसके बाद आपके लिए पेश करता हूं कुछ फिल्मी कवालीज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में. आपका कुछ मनपसंद कवाली आप सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07784691440. आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM. आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम में. पहली कवाली आपके लिए पेश करता हूँ हमेशा की तरह हमारा मनपसंद मास्टर ऑफ कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारी सी कवाली, इंज बिछड़े मुर नहीं आए. आइए सुनते हैं प्यार सी कवाली और मिलते हैं इस कवाली के उस बाद.

उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ से ये प्यारी सी क्वाली आपने सुनी, इंज विछड़े मुर नहीं आए। अब सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली, यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। और स्टूडियो का फ़ोन नंबर 02381980072, 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914400। आइए चलते हैं अब अगली कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ आवाज़ राहत फ़तेह अली खान साहब, इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारी सी कवाली, तेरे बूहे नहीं चढ़ना। आइए सुनते हैं प्यारी सी कवाली, और मिलते हैं इस कवाली के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ बैंक मीट रेडियो, आपकी आवाज़ आपकी शहर में 99.8 FM।

राहत फतेह अली खान साहब की आवाज से आपने ये बहुत ही प्यारी सी क्वाली सुनी, तेरा बुहा नहीं छना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में फिले कवाल यानी कि कवाली प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करता हूँ एवरी ट्यूजडे यानी कि हर मंगलवार आपके लिए पेश करता हूँ 6 से 8 बजे तक। और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और आपके कॉल्स और डेडिकेशन के मुताबिक प्रोग्राम चलता है। आइए चलते हैं अब अगली कवाली की तरफ और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ आवाज़ हदीका खियानी। जी हाँ, हदीका खियानी की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली कवाली, जाने इस दिल का क्या होगा। आइए सुनते हैं ये प्यार सी कवाली और मिलते हैं इस कवाली के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

7784691440. आवाज़ ऑफ़ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। प्रोग्राम को जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ एक नए सिंगर्स, नए कवाली जैन अली और जोहेब अली, और इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली कवाली है दरम। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी क्वाली और मिलते हैं इस क्वाली के उस पार। कई मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 के तावन से आपने ये कवाली सुनी हैदरी हम, जो कि आवाज थी जुहैब अली और जैन अली। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली, यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो कवालीज आपने सुनी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद कवाली हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, 02381980072। आइए चलते हैं अब अगली कवाली की तरफ, और आपके लिए पेश करता हूँ एक बार फिर राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़, ये प्यारी सी कवाली एक ख्वाब सुनाऊँ। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कवाली और मिलते हैं इस कवाली के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

अपराध दिलदार कवाल की आवाज से ये कवाली आपने सुनी, जिथे वंडन हवा खुशबू। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं avazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली, यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो कवालीज आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। आइए चलते हैं अब अगली कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ आवाज़ वारली ब्रदर्स, और इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारी सी कवाली, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा।

वेलकम बैक टू आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो ट्रेडिशनल क्वालीज आपने सुने आपको पसंद आई होंगी। और अब चलते हैं कुछ फिल्मी क्वालीज की तरफ, और अगर आपकी कुछ मनपसंद फिल्मी क्वाली हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम। चलते हैं अब फिल्मी क्वालिटी की तरफ, और आज आपके लिए पेश करता हूँ 2007 की मूवी हेई बेबी। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये पहली कवाली मस्कलंदर। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस क्वाली के उस पार।

बहुत ही जबरदस्त क्वाली आपने सुनी और ये थी मूवी हे बेबी 2007 की रिलीज और आवाज थी रेहान खान, मास्टर सलीम और शंकर महादेवन। उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्मी क्वाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो क्वालीज ट्रेडिशनल क्वालीज और फिल्मी क्वाली आपने सुनी तो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद फिल्मी क्वाली हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मुझे मैसेज कर सकते हैं 07784691440। अब चलते हैं अगली फिल्मी क्वाली की तरफ और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ 2015 की मूवी बजरंगी भाईजान और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारी सी क्वाली अदनान समी की आवाज़ बर्द जोली मेरी या मोहम्मद। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी क्वाली और मिलते हैं इस क्वाली

अदनान समी खान की आवाज़ से ये कवाली आपने सुनी, फिल्मी कवाली बरदो जोली मेरी या मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। आइए चलते हैं अब अगली फिल्मी कवाली की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ 2007 की मूवी बिग ब्रदर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली कवाली। यह है आवाज़ उस्ताद सुल्तान खान और जुबिन गर्ग, इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ जग लाल लाल लाल। आइए सुनते हैं ये प्यारी क्वाली और मिलते हैं इस क्वाली के उस पार। कई मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

चक लाल लाल लाल दिखे मुझको, उस्ताद सुल्तान खान और जुबैन गर्ग की आवाज से। ये फिल्मी क्वाली आपने सुनी, मूवी का नाम था बिग ब्रदर 2007 की रिलीज। उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्मी क्वाली आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। समय प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आपके कुछ मनपसंद फिल्मी क्वाली हो या फिर ट्रेडिशनल क्वाली हो तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, अगले प्रोग्राम में जरूर शामिल करूँगा। हमारा व्हाट्सएप का नंबर 07786 9144 07786 9144। अब अली को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आपके लिए पेश करता हूँ ये आखिरी फिल्मी क्वाली। मूवी का नाम है पाप। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ राहत फतेह अली खान साहब की आवाज से ये प्यारी सी क्वाली मन की लगन। आप इस फिल्मी क्वाली को एंजॉय कीजिए। अली को दीजिए इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।

0: So we need a new jingle, Ali. We got to get in that studio and produce a new jingle.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Ji sajno, tusi suniya eh song, welcome song. Kaisa lag gaya tuhanu? Sanu te jehda lagya si tuhanu dass hi ditta. Hun tuhanu eh kaisa lagya? Eh tusi dassoge, ede utte apni rai deoge. ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: How do you say it? A was or a was?
4: Now, hands up, anybody out there, if you know what a Gruffalo is. You do? Oh, that's good, because it's a kind of mythical creature with large paws and a lot of fur. And apparently it gets its name from being half a grizzly bear and half a buffalo.
5: That was Felix.
6: Southampton's Community Radio, Hours FM.

वे खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। वे गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद। वे पीपड़ी ले फूंक ले हवानी भरी के अंदर। वे ऑर्केस्ट्रा बजा।

0: आपका रेडियो आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़े होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: लाइफ को अटकना नहीं आता, तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।

0: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही। बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू मां।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Natalie DeLuccio and Sunte Rahi hit Awaz FM.

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम,
1: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर्स को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ, बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच, और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ये डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी बखैर।
0: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
1: आई लव यू ऑल।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: How do you say it? A was? Or a was?
6: Your number one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music. Oh, yeah. We are your number one radio station. We only play the hits.
5: Ours FM.
7: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
8: Radio. The medium that's now large.
9: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
10: Ek pal ki laparwahi.
11: Uncle, mujhe to padhi ho ke aeroplane urana tha. Pilot banna tha. Mujhe padhi ho ke doctor banna tha. Main to सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: I hate people that drop litter. Really makes me angry. There's no shortage of bins around. Although, I'm going to say my piece on bins. Those new style bins that have the thing that you pull out.
4: Oh, yeah.
3: Is it me or I don't like touching a bin? Because right. You don't know what, you know, it's just disgusting. And you've got to actually pull this handle that all kinds of skanky people have touched. And it could have like rubbish residue on it. No, not for me. I'd rather take it home with me and put it in my own bin, which doesn't get collected often enough.

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Awaz FM.

0: To listen back to shows on Awaaz FM, simply go to our podcast page on the website at www.awaazfm.co.uk/podcast. You can download any show and listen to it again. These will stay on the website for 14 days. Alternatively, listeners can call the studio on 02381 980072 and press option 4, and you can record your dedication or request. We will then download your voice message, edit it, and then add the requested song and play out during our overnight service.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Aapki awaaz, aapka radio, aapke shehar mein, Awaaz FM.
5: राज राम जी बोलता हूँ भैया अली भैया मेरी एक फरमाइश है अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए तुम रूठ के मत जाना फिल्म है फागुन रफी और आशा भोसले की आवाज में थैंक यू

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।